0: इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/saivachanaamrit ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है
1: Good guys, Gion Aile Tumka, Su Shega Danpa, Auckland Aso Konkani Radio Program, Hariyaka Sanwara,

जय श्री साई राम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहा संसारे बहु दुस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे। पुनरपि संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से बना है, पुनः और अपि। पुनरपि का अर्थ है बारंबार। पुनरपि जननम, जननम का अर्थ है जन्म लेना। पुनरपि मरणम, पुनः मर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि का अर्थ एक बार फिर से कह सकते हैं, वंस अगेन, फिर से। जननी जठरे अर्थात मां की कोख में शयनम, लेटना, या मां की कोख से एक बार फिर से जन्म लेना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक बार फिर से जन्म लेना, एक बार फिर से मृत्यु को प्राप्त होना, एक बार फिर से मां की कोख में लेटना। इहा संसारे बहुत उतारे, इस संसार को पार करना बहुत उतारे अर्थात बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द ओशन ऑफ लाइफ। कृपा पारे पाही मुरारे, कृपा पारे करते हैं थ्रू योर इन्फिनिट काइंडनेस, आपकी असीम कृपा से, आपकी असीम कृपा से, आपकी असीम दया से, आपकी करुणा से। पाही करता है बचा लेना, बच जाना, सेव कर लेना। को बचाता है मुरारे अर्थात डिस्ट्रॉयर ऑफ राक्षस,

मुरारा, जिसने मुर नामक राक्षस को वध किया था, वो कौन थे? श्री कृष्ण। कहने का तात्पर्य, एक बार फिर से जन्म, एक बार फिर से मृत्यु, एक बार फिर से मां की कोख में लेटना और इस चक्रव्यूह से निकलना। बार बार जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जन्म कैसे लेते हैं? मां की कोख में होते हैं, लेटे रहते हैं 9 मास तक। हमारा संगठन होता है, हम बनते हैं, शरीर बनता है, फिर संसार में आते हैं, फिर संसार में उलझ के रह जाते हैं। अगर संसार को पार करना है तो केवल मुरारी की कृपा से ही होगा। विचार कीजिएगा, बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये चक्रव्यूह है, एक साइकिल बन गई है। लेकिन इसको पार करने का तरीका क्या बताया? भगवान की कृपा। आपको याद होगा, भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी ने जब पहला पहला भजन गाया था, मानस भजो रे गुरु चरणम दोस्तर भव सागर तरणम। ज्यादातर लोग कहते हैं मानस भजो रे, असल में शब्द था मनस, मानस भज।

हे मन गुरु के चरणों को भजले मनस भजोरे गुरु चरणम दुस्तर दुस्तर का अर्थ है कठिन दुस्तर भवसागर तरणम दुस्तर है इस भवसागर को पार करना इसको तार लेना इट्स डिफिकल्ट टू क्रॉस द ओशन ऑफ लाइफ उसको उपाय बताया मनस भजोरे गुरु चरणम हे मन गुरु के चरणों को भज ले अब जरा विचार कीजिएगा क्या हम गुरु के चरणों को भजे क्या बोले गुरु चरणम गुरु चरणम गुरु चरणम रट्टा लगा लें नहीं क्या इसका अर्थ ये बोल सकते हैं हम लोग कि गुरु के ध्यान में रहें चलो पीछे चलते हैं 5,000 साल पहले पीछे 5,000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा अर्जुन हे पार्थ जो अंत काल में मुझे स्मरण करता है वो मुझको प्राप्त हो जाता है Whoever remembers me at the last breath of his life, at end of the life, he reaches me. विचार कीजिएगा कहीं पर यह भी कहा अर्जुन जो अंतकाल में ओमकार जपता है वह मुझ तक पहुंच जाता है जो ओमकार का स्मरण करता है याद करता है जपता भी है और जपना का जरूरी नहीं है अपनी जीभ से जप रहे हो आप मन के अंदर भी आप ओमकार की ध्वनि गूंज सकती है आप जरा विचार कीजिएगा क्या अंतकाल में आप ओमकार बोल भी पाएंगे केवल मन के अंदर भी बोल पाएंगे बड़ी बात है मुंह की बात छोड़िए जीभ की बात छोड़िए वाणी की बात छोड़िए अंतरकण में अपने मन में केवल मन में ओनली इन माइंड अब मन के अंदर भी ओमकार अंतकाल में बोलने बहुत बड़ी बात है पहली बात यह है कि हम जानते नहीं हमारा अंत कब होगा कोई भी नहीं जानता दूसरी बात अगर हमने अपनी पूरी उम्र लगा दी संसार के

पीछे भागने में संकार हमें इतना आकर्षित करने लग गया कि कुछ हम सोच ही नहीं पाते। और विचार की जगह छोटी छोटी बातें हैं, आप बाजार में घूम रहे हैं, शॉपिंग करने गए हैं, शॉपिंग मॉल में हैं, आपने एक नई चीज देखी, आपके मन में एकदम से विकार उठा, मन के अंदर इच्छा उठी, मन के अंदर तमन्ना जागी, एक डिजायर उत्पन्न हो गई, आई रियली वॉन्ट टू बाय दिस, मैं ये खरीदना चाहता हूं लेकिन पैसे नहीं है, पैसे इकट्ठे कर लूं बाद में लूंगा। बधाई हो, बधाई हो, इसलिए कि आपके अंदर एक इच्छाओं का अंबार खड़ा हो गया, एक और इच्छा ऐड हो गई, और दिन भर में ना जाने हम कितनी चीजों को ऐसे देखते हैं, उसको अंदर लेके आ जाते हैं, मन के अंदर लेके आ जाते हैं। तो मन क्या है? माइंड इज जस्ट द बंडल ऑफ डिजायर्स, मन केवल इच्छाओं की गुत्थी है। कोई चीज को हम बारंबार देखेंगे, बारंबार देखेंगे, बारंबार उसको खरीदना चाहेंगे, बारंबार याद आ गया, किसी ने कहा था देखो भालो तको मत, कोई चीज को देखो लेकिन तको नहीं, बार बार ताकते रहोगे, देखते रहोगे, ताकने करते हैं उसको बारंबार देखना विद इंटेंशन ऑफ डिजायर। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके घर, आपके गाड़ी के आसपास हजार गाड़ियां जाती हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कोई एक गाड़ी पे आपकी नजर बैठ जाती है, बारंबार उसको देखते हैं, आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है। आप बाजार में चल रहे हैं, सामने अनेक स्त्रियां घूम रही हैं, आपको नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन एक दो ऐसी स्त्रियां होती हैं आपको आकर्षित कर जाती हैं, आप उससे विवाह करना चाहते हैं। ऐसे पुरुष भी हो सकते हैं जिनसे विवाह करना चाहते हैं। देखो भालो तको मत, तो दोष दृष्टि का है, दोष lack of control over desires, lack of control over senses, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं किया, उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, प्रतिबिंबित करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा, उस पर विराम लगाना पड़ेगा, उसे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, विचार कीजिएगा। अंतकाल में जिस चीज से हमको ज्यादा मोह है वही हमें याद आएगी, अंतकाल में जिस चीज के पीछे हम भागते रहे हैं पूरी उम्र वही सामने आएगी, अंतकाल में जो हमारी सबसे प्रबल इच्छा है वो आगे आके खड़ी हो जाएगी। कर लो बात, अंतकाल में ओमकार बोलना इतना आसान होता तो बड़े बड़े साधु संत कब से मुक्त हो गए होते मेरे भाई। तो क्या किया जाए? अंतकाल में भगवान का नाम स्मरण करने के लिए उसका अभ्यास अभी से करना होगा। मन से भजो रे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम, हे मन गुरु के चरणों को भज। विचार कीजिएगा, गुरु के चरणों को भजने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, यह क्या अर्थ हो सकता है? आप जब खड़े होते हैं अपने पांव पे खड़े होते हैं, आपके पांव आपके पूरे शरीर का भार उठाते हैं, सही है या गलत, इज दिस राइट और रॉन्ग? इसका मतलब यह हुआ आपके गुरु जो है अपने चरणों पे खड़े हैं तो पूरे गुरु खड़े हैं। जब कह रहे हैं मनत भजो रे गुरु चरणम, तो आप अपने गुरु को याद करो, उसको स्मरण करो, भजो, लेकिन क्या भजो मेरे भाई? गुरु गुरु बोलते रहे हैं क्या, क्या गुरु के स्वरूप को याद करते रहे? उससे भी कहीं ज्यादा अर्थ बन सकता है। गुरु जो आपके जीवन में से अंधकार को हटा के ज्ञान का प्रकाश ला रहा हो,
गुरु के चरणों का अर्थ है द प्रिंसिपल्स ऑफ द गुरु द टीचिंग्स ऑफ द गुरु द नॉलेज ऑफ द गुरु

गुरु चरण का अर्थ है आपके जो गुरुदेव हैं वो आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं उस पे चलो। भजो गुरु चरण अर्थात गुरु ने जो आपको शिक्षा दी है, जो सिखाया है, जो नॉलेज दी है, जो ज्ञान दिया है, उस पे आपको चलना है, उसको भजना है। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे शयनम या संतारे बहु दुस्तारे कृपा पारे पाई मुरारे। आप जरा विचार करें, हम बात कर रहे हैं कि गुरु चरण पे खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होता है जब छोटा बच्चा चलना सीखता है पहले तो घुटनों के बल चलता है, फिर माँ बाप उसकी उंगली पकड़ के उसको चलना सिखलाते हैं, थोड़ा चलना सीख जाता है आपका हाथ पकड़ना नहीं चाहता, आप उसके हाथ को पकड़ेंगे हाथ छुड़ा देगा। अब बच्चे बड़े हो गए, अगर अभी आप सड़क पे जाए, आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं, बच्चे को हाथ का पकड़ो हाथ छुड़ा देगा, अरे क्या कर रहे हैं आप, आई एम ग्रोन अप, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं चल सकता हूं। बच्चे अपने पांव पे खड़े होना चाहते हैं, स्पेशली टीनेजर्स, वो चाहते हैं कि हम अपने पांव पे चलें, अपने रास्ते पे चलें, उनके अंदर अपनी इच्छाएं हैं, अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहते हैं, अपने आप पे गर्व की जगह अहंकारी होकर रह जाते हैं। शब्दों पे गौर कीजिएगा, अपने पांव पे खड़े होना, जब बार बार बोलते हैं मैं अपने पांव पे खड़ा हूं, अपना अपना अपना, व्हाट इज अपना, अपना क्या है, ईगो, अहंकार, और ये अहंकार इंसान को परमात्मा से कदापि मिलने नहीं देता, व्हाट्स एवर इट मे बी। सोचिएगा आप, इसका मतलब यह हुआ कि पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम बार बार मृत्यु बार बार जन्म या बार बार जन्म बार बार मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को तोड़ना होगा। अहंकार से हमें विरक्त होना होगा, अलग होना होगा, हम ही तो मार रहे इंसान को और क्या मार रहे हैं। जरा विचार करें, जब रात को आप सोने जाते हैं, कई लोग होते हैं जिनको लेट से नींद आ जाती है, कईयों को 5-10 मिनट लग जाते हैं, थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आप चाहे 1 मिनट में सोएं या 10 मिनट में, जब जाके लेटते हैं आपके मन में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है भाई, ब्लैंक तो नहीं होता, खाली तो नहीं होता, मन के अंदर कोई तो भावना चल रही होती है, कोई तो बात चल रही होती है, ये बात चल रही होती है मे बी कि हम कल सुबह उठेंगे, क्या काम करना है, आप सो जाते हैं। जब सुबह आपकी आंख खुलती है, जहां पर आपने रात को बात छोड़ी थी वहीं से शुरू हो जाएगी, आप घर को कोशिश कीजिएगा, अर्थात आप कोई बात सोच रहे थे और सो गए, या तो सपना वैसा आ जाएगा या सुबह उठते आपको वही बात याद आ जाएगी, मतलब कि थॉट कंटिन्यूज, आपका विचार आगे प्रवाह होता है, बीच में थोड़ा विराम आता है, 6-7-8 घंटे जो सोते हैं आप। क्या हम ये कह सकते हैं कि स्लीप इज द शॉर्ट डेथ, जब आप कुछ घंटों के लिए सोए वो कुछ घंटों की मृत्यु थी? क्या हम ये कह सकते हैं कि आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है फिर उसका दोबारा जन्म होगा काफी समय के बाद, ना जाने 1 साल के बाद या 1 दिन के बाद या 1000 सालों के बाद, हम कह सकते हैं कि डेथ इज द लॉन्ग स्लीप, हम कह रहे हैं स्लीप इज अ शॉर्ट डेथ एंड डेथ इज द लॉन्ग स्लीप। शब्दों पे गौर कीजिएगा, जब आप मृत्यु को प्राप्त हो गए आप सो गए, फिर दोबारा आपका जन्म होगा, लेकिन जहां पर आपकी मृत्यु हुई थी जिस

विचार के साथ हुई थी, वो विचार आपके अगले जन्म में फिर से प्रभावित होगा। जिस उसी प्रकार से जो रात को आप विचार सोते हुए सोते हैं वहीं से सुबह आरंभ होता है, उसी प्रकार से जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे अगला जन्म आपका उसी विचार से आरंभ हो सकता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी। यू मे स्टार्ट यूअर फ्यूचर लाइफ विद द सेम थॉट विद व्हाट यू हैव एंडेड द प्रीवियस लाइफ। पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम, बार बार जन्म मां में मृत्यु का कारण यह है कि हम मरते ठीक से नहीं हैं, हम मरते ठीक से नहीं है, हमें किसी ने तरीका नहीं सिखलाया मरने का, हमने अपने मृत्यु की तैयारी नहीं करी है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। समस्या केवल यही है क्योंकि आप जानते नहीं है आपकी मृत्यु कब होगी। पहली बात तो यह है, हाउ कैन यू प्रिपेयर। अगर किसी को बताया जाए ना, भैया आपकी मृत्यु इस समय इस दिन पे होगी, आप तैयारी कर लेंगे, आपका पता ही नहीं है, आप तो छोड़ो यार, इन चक्रों में कौन पड़े, एंजॉय योर लाइफ। हमारी इच्छाएं हमारी आदतें बन जाती हैं, हमारी आदतें हमारे संस्कार बन जाते हैं, हमारे संस्कार या हमारी आदतें हमारी इच्छाएं जो वासनाएं बन जाती हैं वही संस्कार बनते हैं, और जन्म भर जन्म वो संस्कार साथ चलते हैं, मिटते नहीं है, कैरी फॉरवर्ड आगे चलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है स्टार्ट अर्ली रीच सेफली, जल्दी शुरू करो और सेफली ठीक ठाक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। उसके लिए आसान सी बात है, पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी वासनाएं क्या हैं, अपने आप से पूछें, अपने आप से खोजें मेरे अंदर क्या कमी है, मैं किस ओर ज्यादा बह जाता हूं। संसार की आकर्षित वस्तुओं की ओर, प्रॉपर्टीज की ओर, मकानों की ओर, गाड़ियों की ओर, लड़कियों की ओर, लड़कों की ओर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ओर, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको छोड़ती नहीं है या आप उन्हें नहीं छोड़ते हैं। काम वासनाएं नहीं छोड़ती हैं, क्या नहीं छोड़ता है। अगर आप उस पर अभी प्रतिबिंब नहीं लगाएंगे, अगर आप उसको अभी नहीं रोकेंगे अगर उस पर आप अभी विराम नहीं लगाएंगे, माफ कीजिए गलत शब्द का प्रयोग किया, विराम प्रतिबिंब नहीं, विराम, प्रतिबिंबित करते होता रिफ्लेक्ट होना, विराम करते होता रोक देना, फुल स्टॉप लगा देना। अगर आप विराम नहीं लगाएंगे, आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे, वो वास्तव प्रबल हो जाएगी और अंतकाल में गुरु के चरणों को नहीं याद कर पाएंगे। अंतकाल में आप गुरु के शिक्षाओं को याद नहीं कर पाएंगे, अंतकाल में गुरु के बताए रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, अंतकाल में परमात्मा आपके जगत में आपके ध्यान में नहीं आएगा, आपको ध्यान में नहीं आएगा, अंतकाल में आप भगवान का नाम तक नहीं ले पाएंगे, अंतकाल में केवल आपकी वासना आपके सामने मुस्कुरा रही होगी, खड़ी होगी, कम ऑन लेट्स गो टू द नेक्स्ट जर्नी, अगली यात्रा की तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। व्हाट ए कंपनी। आपको ऐसा कोई सहयोगी नहीं चाहिए जो आपको जन्म जन्म चलता रहे, आपकी वासनाओं को हवा देता रहे। विचार कीजिएगा, पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, पुनर्पि जननी जठरे शयनम, बार बार माता की कोख में जाकर लेटना, यह संसार है बहुत दोस्तारे, इस संसार को पार करना बहुत दुस्तर बहुत कठिन है, कृपा पारे पाही मुरारे, केवल मुरारी की कृपा से दूर हो सकता है, मुरारी की कृपा से जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं, केवल विद द ग्रेस ऑफ गॉड यू कैन अचीव लिबरेशन।
और कृपा कब मिलेगी? जब आप मनत भजोरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरनम, जब बार बार अपने मन में गुरु की शिक्षा को, अपने इरादे देव को, अपने परमात्मा को, अपने इष्ट देव को याद करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते में चलने का प्रयास करते रहेंगे, तब वो भी गारंटी नहीं है एक जन्म में हो जाएगा. इट कैन टेक मैनी लाइफ टाइम्स, कई जन्म लग सकते हैं. ये निर्भर करता है आपका पुरुषार्थ कितना है, निर्भर करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, निर्भर करता है आपने कितना इस पे ध्यान दिया है. जरा विचार कीजिएगा, जब रात को आप सोने जाते हैं, वो बात फिर लौट लौट के कह रहे हैं, रात को जब सोने जाते हैं, क्या आपको इस बात की गारंटी है कि सुबह आपकी आंख खुलेगी और जीवित होंगे? प्लीज टेल मी, आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन. एक साधारण सा प्रश्न है कि जब सुबह, जब रात को आप सोने जाते हैं, क्या आपके पास गारंटी है कि सुबह आपकी आंख खुलेगी? नहीं. फिर सोते वक्त आप ये नहीं कर सकते, अपनी सांस पे ध्यान दें, सांस अंदर आ रही है बोले सो, सांस बाहर जा रही है बोले हम, मन ही मन में बोले सो हम, सो हम. सो हम का अर्थ है आई एम दैट, अर्थात मैं वह हूं. वह कौन? परमात्मा. आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि ही, मैं ही परमपिता हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं. यह प्रैक्टिस करें हर जगह, नैन में, शयन में, सोते जाग आंखों में, सोते हुए, गगन में, पवन में, आसमान में, बाहर पवन में, हवा में, वातावरण में, जन्म में, मृत्यु में, हर जगह आपको केवल परमात्मा ही नजर आए, उसी की याद आए. अगर इस बात की आप प्रैक्टिस कर लें मेरे भाई, किसी क्षण आपको मुक्ति मिल सकती है. जय श्री साईं राम.

0: whole world of radio on planetaudio.org.nz.
1: Kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunan Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan ng katutuhanan dito sa Planet FM 104.6 kasamang yung lingkod kapatid Lin Mangangaral tuwing Linggo sa alas 10:10 hanggang alas 10:40 ng umaga at maraming salamat po sa inyong pakikinig.
2: पंजाबी मेरी जान वर्गी पंजाबी मेरी पहचान वर्गी पंजाबी बुजुर्ग दी दुआ वर्गी पंजाबी निरे खुदा वर्गी पंजाबी नानक दी रबाब वर्गी पंजाबी कोरे जवाब वर्गी पंजाबी चमक दे आफताब वर्गी पंजाबी नैणा दे नीर वर्गी पंजाबी सजना दे नाम वर्गी ते पंजाबी बोर्ड दी छां वर्गी भुल के भी ना इसनों भुलाउणा क्योंकि साडी पंजाबी है मां वर्गी सुनते रहना प्रोग्राम नचता पंजाब हर मंगलवार की शाम 3:15 तो लेके 4:45 तक बने रहो नचता पंजाब की टीम अमरीक जी तेरीना सिंह के नाम धन्यवाद जी नचता पंजाब 104.6 प्लैनेट एफएम ते ऑनलाइन सुनने लिए www.planetaudio.org.nz/नचता पंजाब
3: Ravi Grover will be back next Sunday morning at 7:15 with the teachings of Satya Sai Baba for our Hindi listeners. If you'd like to listen to the Satya Sai Baba programs again, go to our website planetaudio.org.nz and click on Gujarati or Hindi. In a few minutes, Krishna Kanta Devi Dasi joins us on the weekly program Krishna Consciousness at 7:50.
4: Need a break? Join Mariska and Kara for Two Sugars. Conversations over coffee. Wednesday afternoons at 3:55 on 104.6 Planet FM. Or listen anytime. planetaudio.org.nz